0: भेज जाएंगे।
1: आए हैं तो काम भी बताइए।
2: ना ना ना, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
3: कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता।
4: ना ना ना ना ना,
5: कैसे हो किरा एफएम।